0: गए।
1: रहमत है सरासर मेरे सरकार दो आलम, बेमिसल है यकता है मिसाल उनकी मैं क्या दूं। जब नसर में सीरत का इहाता नहीं मुमकिन, तो अशार में अखलाके नबी कैसे बता दूं। जजीरा अरब जहां तारीकियों का बसेरा था, जहालत और मासियत का डेरा था, लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, कत्ले इंसानी उनका महबूब मशगला था। जब जहालत उरूज पर पहुंच चुकी, तो मक्का में आफताबे हिदायत तुलू हुआ, जिसकी किरणों ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और आलम मोहब्बत से आशना हुआ। भटकी इंसानियत ने हिदायत पाई, तारीकियों में उजाला बनकर मेरे